0: Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB Plus Radio.
1: बड़ा कीमती होता है वक्त इश्क मोहब्बत और प्यार का। कभी कभी आता है ऐसा मौसम इजहार का।

घर है हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में। मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब अर्ज़ों। यह है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी की दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, शादी सालगिरह, विवाह संस्कार, जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। सुनने वालों, आज बुधवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 032-65-65-60 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 032-62-66-11। रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl। सुनने वालों, यहाँ से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

0: रेडियो SBS की जरिए पेश की गई सुबह सुबह लो सीयू का नाम हरिहरन के आवास में ये सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। आप सभी सुनने वालों को एक बार फिर से वेलकम स्वागत किया जा रहा है और रेडियो SBS की जरिए भजन यात्रा प्रोग्राम जो पेश किया जा रहा है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। आज बुधवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है। मैं हूं आपका खिदमतगुजार रबीन। अगला भजन जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में एक सुंदर भजन होगा अनुराधा पोटवल जी की आवाज में।
1: कांवरिया भगवान सदाशिव से प्रार्थना करता है, हे प्रभु अब की बार हमारी खाली झोली भर दो, अगले बरस हम फिर कांवर लेकर आएंगे। ये उच्चारते हुए भाव विभोर भक्तों की भीड़ प्रभु दर्शन के लिए उमड़ पड़ती है।

रेडियो एसबीएस की जरिए अनुराधा पोटवल जी की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। आसरों मीठे सुंदर भजन आपने सुना और बेहद पसंद किया है। चले अब की बार ये सुंदर भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो एसबीएस की जरिए नरेंद्र चंचल की आवाज में। ये सुंदर सा भजन सुनते ही रहे।

रेडियो SBS के जरिए नरेंद्र चंचल की आवाज में सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस बीस की गई है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11 और बहुत सी सुनने वालों है जो इस वक्त प्रोग्राम को सुनते हैं। रेडियो SBS का वेबसाइट के जरिए radio sbs.nl के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड के जरिए कंप्यूटर के जरिए भी हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं दुनिया की कोने कोने में और सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए ये प्रोग्राम भी सुनाई देता है।

0: दिन आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए भजन यात्रा प्रोग्राम पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में, और ये प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना।
1: शरीर रूपी कांवर कब टूट जाए, इसीलिए भक्तिन प्रभु के साथ साथ रहना चाहती है।

रेडियो वेज में इसकी जरिए सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में और पेश हुआ है चंदना दीक्षित की आवाज में ये सुंदर और सुंदर भजन। हम आपको ले चलेंगे अब की बार शर्मा जी की ओर और पेश किया जा रहा है ये सुंदर भजन आज की।

ये सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। आपको हम ले चलेंगे आपकी बार हरिओम शरण जी की ओर। एक सुंदर भजन आज की सुबह की प्रोग्राम में जो पेश किया जा रहा है रेडियो एसबीएस की जरिए।

भजन हरिओम शरण जी की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस भी इसकी गई और रेडियो SBS की जरिए अभी आपने सुना। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं आरती भजन की ओर, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की जरिए। सुंदर सा आरती भजन बस प्रोग्राम में जरूर और जरूर सुनते ही रहना, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार के तरफ से, आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। और हमारे सभी सुनने वालों जो दुनिया के कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।

आज बजकर प्रोग्राम में 11 मिनट व्यतीत हो चुका है। बुधवार का दिन 22 तारीख जुलाई का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह बस पेश किया जा रहा है। बाहर की ओर देखा जाए बादल छाया हुआ मौसम है, समय समय पर रिमझिम बारिश भी हो रहा है। तो आप सभी सुनने वालों को फिर भी शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। के और हेमा सर दिसाई द मूवी।

जमीन फिल्म का गीत पेश की गई के और हेमा सर देसाई की आवाज में। अभी आपने सुना ये खास गाना। सुनने वालों, वेबसाइट होता है radio.sbs.nl। उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन मोबाइल फोन के जरिए हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं दुनिया की कोने कोने तक, सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए और DAB प्लस रेडियो के जरिए भी। मिड नीदरलैंड में और प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में ये प्रोग्राम सुनाई देता है। के और हेमा सर देसाई के बाद जोनिता गांधी और साथियों की आवाज में ये गाना।

की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और हमारा आज का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी इस प्रोग्राम को सुनते हैं। चले प्रोग्राम में अब की बार एक गाना सोनू निगम की आवाज में द फिल्म मदहोशी पेश किया जा रहा है।

निगम के आवास में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए अब की बार गाना जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है वजीत और श्रेया जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

0: अब उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरों भी देखिए गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गए है।
1: कल तक मुझे थी ना खबर।
0: अब की बार सोनू निगम एंड सुनिधि चौहान की आवाज

सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। सबसे पहले आप सभी सुनने वालों को स्वागत किया जा रहा है गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ। बहुत से सुनने वालों होते हैं जो पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ हमेशा और हमेशा सुनते हैं। तो चले आप सभी के लिए गर्मा गर्म कॉफी चाय बस पेश किया जा रहा है। ले चलते हैं पहला गाना की ओर जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। द माइटी मुकेश की आवाज में

ये मस्त मस्त बिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं।

0: न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन।
1: मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म का नाम तुमसा नहीं देखा। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। चले मन्ना डे की ओर और मन्ना डे की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है, दिल का हाल सुने दिलवाला, श्री 420 फिल्म का नाम है।

0: वाला दिल का हाल सुने दिल वाला सीधी सी बात न मिल
1: मन्ना डे की आवाज में गाना प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म का नाम श्री 420 दिल का हाल सुने दिल वाला गाना जो प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जिंदगी देने वाली सुन द मैन विद द गोल्डन वॉइस तलत महमूद

गाना जो प्रोग्राम में पेश किए गए द मैन विद गोल्डन वॉइस तलत महमूद जी की आवाज में अभी आपने सुना। आज के प्रोग्राम में जो पेश किए गए हैं सुनने वालों, रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.NL, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी हमारा ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। लता मंगेशकर प्रोग्राम में आपकी बार होगा।

लता मंगेशकर की आवाज में एक गाना पेश की गई। फिल्म का नाम था झुक गया आसमान। उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आज के प्रोग्राम में जो पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में आशा जी की ओर हम आपको ले चलते हैं और अब की बार फिल्म का नाम होगा

धनजू बीच की गई जब था मेरा जादू। आशा जी की आवाज में फिल्म का नाम था लूटमार। उसी ये फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS की जरिए। जब था मेरा जादू ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। मुकेश जी की आवाज में अब की बार ये गाना।

रेडियो बेस पे इसकी जरिए द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकीस की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले फिल्म शर्मिले की ओर, किशोर और लता जी की आवाज में एक गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

लतामन गीस्कर और किशोर कुमार की आवाज में गाना प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में सुनने वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0302 65 65 60।

सुनने वालों की सेवा में पुरानी फिल्म नजराना, पुरानी फिल्म नजराना का गीत आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। अब की बार मोहम्मद रफी और आशा होगा।

रेडियो SBS की जरिए गाना आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। लाइव की जरिए रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जो है सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

फरमा श्री मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले अब की बार ये गाना की ओर, कश्मीर की गली फिल्म का नाम होगा और आशा और मोहम्मद रफ़ी की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश होगा।

तेजी की आवाज में फिल्म दीवाना का गीत पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में लता जी की आवाज में फिल्म दो बदन का ये गाना पेश किया जा रहा है।

सुहाना सफर और ये मौसम हसीन गाना उस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

हेमंत कुमार और गीता दत्त की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। फिल्म का नाम था फैशन। चले प्रोग्राम में मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा।

की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म का नाम था प्रेम कहानी। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं पुरानी नगमे, आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में चले मिलकर सुनते हैं ये गाना फिल्म प्रोफेसर

गुप्ता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए आज के प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं, फिल्म का नाम है कुर्बानी, उसी फिल्म का गाना पेश किया जा रहा है।

बस आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए प्रोग्राम में उदित नारायण एनालका की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है, शादी से पहले फिल्म का नाम, एक फिल्म जो 2006 में रिलीज किया गया है।

में फिल्म का नाम शादी से पहले फिल्म का नाम और उसी फिल्म से ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अब की बार ये गाना आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई तेरे बिना रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है वेबसाइट radio.sbs.nl। कुमार सानू एन सुनिधि चौहान प्रोग्राम में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है कुमार सानू और सुनिधि चौहान की आवाज में।

सुनिधि चौहान की आवाज में ये गाना पेश की गई शब्द फिल्म का नाम और उसी फिल्म से ये गाना भी आपने सुना। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322-66-66-11। कुणाल गांजावाला एंड सुनिधि चौहान, शकलाका बूम बूम फिल्म का नाम।

कुणाल गांजावाला और सुनिधि चौहान की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अब की बार हम आपको ले चलते हैं गाना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। आज के प्रोग्राम में जरूर और जरूर सुनते ही रहना हमारा उम्मीद है गाना आप सभी सुनेंगे और बेहद पसंद करेंगे। जावेद अली और साथियों की आवाज में ये गाना

रेडियो SBS के जरिए ये गाना पेश की गए जावेद अली और इंदु पांडे की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए। शौर्या फिल्म का नाम अबकी बार अदनान सामी एंड सुनिधि चौहान की आवाज में आज के प्रोग्राम में ये गाना पेश किया जा रहा है।

सौरिया गाना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई रेडियो SBS की जरिए। आज का प्रोग्राम जरूर आप सुनते हैं राइट नाम रेडियो SBS का जो पेश किया जा रहा है संगीत भरी स्टेशन हॉलैंडी से यूट्रेख्ट शहर से। ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। शिखर फिल्म का नाम 2004 में ये फिल्म रिलीज किया गया है। एक गाना उसी फिल्म का उदित नारायण एंड अलका जी की आवाज में।

उदित नारायण और अलका की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अब की बार अनुराधा पोटवाल और उदित नारायण की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

सुनने वालों, रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। यहाँ से प्रोग्राम में मृत्यु समाचार, दुख की खबर आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। कोई चल दिया है अकेला, कोई रह गया है अकेला, ऐ दुनिया के मालिक तूने कौन सा खेल खेला। प्रोग्राम में मृत्यु समाचार सुनने के लिए ध्यान दीजिए अर्थात गौर फरमाइए। उत्रेख्ट आम्स्टरडम से स्ट्रैटवेग नंबर 97 से लड़कन जेन, आशा, राजेश, सीता और समस्त लड़कन बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं। शुक्रवार 17 जुलाई, फ्राइडे 3 जुलाई, सुबह 9:30 स्मोरगंस 3:30, 86 साल, 87 साल की आयु में। 4 लड़कन जेन, आशा, राजेश और सीता के पिता, 12 लड़कन के आजा और नाना, 6 लड़कन के पर आजा और पर नाना। उत्रेख्ट आम्स्टरडम से स्ट्रैटवेग 97 का रहने वाला सूरज प्रसाद भगवान सिंह, जिन्हें लोग सूरज प्रसाद के नाम से पहचानते थे, इनकी मृत्यु हो गई है बोस एन डाउन में। अर्थी डोंदडाग 23 जुलाई, स्मेडक्स 2:15, क्रेमेटोरियम नोर्दरफेल्ड स्ट्रक्चर बांध नंबर 1 नीवगेन शहर में दाह क्रिया की जाएगी। जी लोग इस मृत्यु समाचार के बारे में कुछ और जानना चाहेंगे या समस्त दुखित परिवार को आप शोक सहानुभूति पेश करना चाहेंगे तो तार की नंबर आपको दिया जा रहा है 06-48-49-28-29. सुनने वालों से निवेदन और गुजारिश किया जा रहा है खबर को और जान पहचान वालों तक पहुंचा देने के लिए। रेडियो SBS इन तमाम दुखित परिवारों को इस दुख की दिनों में शोक सहानुभूति पेश कर रहे हैं और ऊपर वाला से यही प्रार्थना किया जा रहा है इन तमाम दुखित परिवारों को इस दुख की दिनों में पूरा पूरा शक्ति देने के लिए। रेडियो SBS आप लोगों के दुख में पूरा और पूरा शामिल है। इसी तरह से रेडियो SBS की जरिए अभी आपने सुना प्रोग्राम में मृत्यु समाचार, दुख की खबर जो पेश की गई है।

ये गाना बस आज की ये प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11। इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं। ऐलान फिल्म का नाम होगा आपकी बार के और सुनिधि चौहान की आवाज में ये खूबसूरत गाना पेश किया जा रहा है।

फिल्म में ऐलान का गीत भी इसकी गई। आप सभी सुनने वालों की सेवा में दिल में हलचल रेडियो एसबीएस का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई शिल्पा राव की आवाज में अभी आपने सुना। सर उम्मीद है सुनकर और बेहद पसंद किया है। चलिए गाना शान की आवाज में आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। सुनकर और बेहद पसंद किया है। चलिए गाना शान की आवाज में आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

रेडियो एस बी एस की सर ये गाना शान की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई, आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में राहत फतेह अली खान और श्रेया जी की आवाज में फिल्म बॉडीगार्ड का गीत भी

प्रोग्राम भी है, इसकी गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में पेश हुआ है। चलिए फिल्म दोन दो की ओर एक गाना जो आज की प्रोग्राम में पेश किया जा

रेडियो SBS की जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में। फिल्म का नाम था डोन डो, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की ये प्रोग्राम में जो पेश की गई।

सुशांत की आवाज में ये गाना पेश की गई है, हमें तुमसे प्यार की तना श्रेया जी की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई है। चलिए कुमार सानू जी की ओर, कुमार सानू की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अबकी बार नीरज श्रीधर एंड सुनिधि चौहान के आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

और सुनिधि चौहान की आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई। कुमार सानू और अनुराधा पोटवाल प्रोग्राम में अब की बार गाना जो पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

पूरे सभी सुनने वालों की सेवा में आशा करूं उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए कुमार सानू जी की आवाज में एक और खूबसूरत गाना आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

अनु जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। अतीफ असलम की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS की जरिए गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो मीठे की गाना अतीफ असलम की आवाज में आपने सुना और बेहद पसंद किया है। विनोद राठौर एंड साधना सरगम प्रोग्राम में

अलका जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में गाना सोनू निगम और श्रेया जी की आवाज में पेश किया जा रहा है।

महेंद्र कपूर और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। मोहम्मद रफी अब की बार प्रोग्राम में होगा और आपको हम ले चलते हैं एक और बड़ी ही खूबसूरत गाना की ओर। मरहूम मोहम्मद रफी प्रोग्राम में।

ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS के जरिए पुरानी नगमे बस पेश किया जा रहा है और प्रोग्राम को आप जरूर सुनते ही रहना। मन्ना डे और लता जी की आवाज में चले मिलकर ये गाना को सुनते हैं, मस्ती भरा है शबाब।

गाना जो प्रोग्राम में पेश की गई मन्ना डे और लता जी की आवाज में की मस्ती भरा है शबा। मन्ना डे और लता जी की आवाज में ये खूबसूरत पुरानी फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई है। चले आज के प्रोग्राम में एक बार फिर से लता जी की ओर हम आपको ले चलते हैं।

मौसम है आशिकाना। लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। फिल्म का नाम था पकीसा, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो प्रोग्राम में पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-262-6611। इसी तार की नंबर पर हमेशा स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। और अगर आप व्हाट्सएप करना चाहेंगे तो अपना मोबाइल टेलीफोन मोबाइल फोन पर जाइए रेडियो SBS का वेबसाइट पर radio.sbs.nl और उसी वेबसाइट के जरिए भी आप ऐप कर सकते हैं स्टूडियो की ओर। किशोर कुमार प्रोग्राम में होगा।

रेडियो SBS के जरिए किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुन वालों की सेवा में। पुरानी नगमे रेडियो SBS के जरिए पेश किया जा रहा है और पुरानी नगमे आप जरूर सुनते ही रहना। मुकेश और लता मंगेशकर प्रोग्राम में एक मंजिल राही दो फिर प्यार मिले।

प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की ओर हम आपको ले चलते हैं। गाना जो अभी बार पेश किया जा रहा है मोहम्मद रफी एंड सुमन कल्याणपुर।

फी और सुमन कल्याण पुर की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में

किशोर कुमार एंड आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म का नाम था अधिकार। उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की ये प्रोग्राम में मुकेश एंड लता प्रोग्राम में। मुकेश और लता जी की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। फिल्म का नाम है संगम।

मुकेश और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए एक गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं आशा जी की आवाज में जो पेश किया जा रहा है।

काफी पुरानी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गए द नाइटिंगेल ऑफिशिया आशा जी की आवाज में अभी आपने सुना ये खास गाना। एक गाना आज के प्रोग्राम में पेश होगा मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में।

रेडियो एस बी एस की सरिया मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। एक गाना मुकेश और लता जी की आवाज में पेश किया जा रहा है।

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता।
1: सुन बलो, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। आज के प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। मैं आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0352565666। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

हेलो नमस्ते और आदाब। मैं हूँ आपकी आरजे अंशुलि करमलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर पे। हेलो अलमाल, दिस इज यू आरजे अंशुलि करमलाल, तो वार्ड वेलकम हेट इन इट प्रोग्राम गीतों के लहर। Wilt reageren? Kan het altijd. Surf naar de website www.radiosbs.nl of bel gerust met 030-262-6611. En voor alle andere info kunt u altijd bellen met 030-265-6560. Het eerste liedje van vandaag is...

0: बहुत खूबसूरत है आंखें तुम्हारी, बना दीजिए इनको किस्मत हमारी।
1: उसे और क्या चाहिए जिंदगी में, जिसे मिल गई है मोहब्बत तुम्हारी।
2: किसका चेहरा अब मैं देखूं तेरा चेहरा देख के। बेहतरीन गाना आपने सुना फिल्म तरकीब से, जगजीत सिंह और अलका याचने की आवाज़ में। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। फिल्म दिलविल प्यार व्यार से आप सुनिए, गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम।

रेडियो SBS के जरिए से आपने सुना फिल्म खुदा हाफिज से। आप हमारी जान बन गए मिथुन, विशाल मेहरा और अजीज कौर की आवाज में। और अगला गाना रेडियो SBS का प्रोग्राम में है फिल्म ऐतराज से। उदित नारायण और सुनिधि चौहान की आवाज में आप सुनिए गीला गीला गीला दिल गीला गीला।

बड़ी नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफ़र है। धड़क आहिस्ता है ये दिल, मोहब्बत का सफ़र है। Kwam uit de film Jogger's Park. Gaan we dan verder met uit de film Reis. Gezongen door Pauni Pandey komt Lela met Lela.

0: मैंने कोई जादू नहीं किया, तू ही मेरे पीछे आया पिया आवाज अवर द फिल्म मुझे कुछ कहना है। दिल्ली तेज खजोहदोर कुमार सानू एंड प्रीति अवर द फिल्म यादें कम तुत फोहत लीजिए फिया रेडियो SBS। जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले।
1: जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले। जब दिल मिले तब गुल खिले। जब गुल खिले तब दिल मिले। मिले मिले मिले मिले दिल मिले खिले।

थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी। बेहतरीन गाना आपने सुना अलका याचिक और उदित नारायण की आवाज़ में फिल्म मैंने दिल तुझको दिया है से। तो अब आप सुनिए फिल्म शुभ मंगल सावधान से अरिजीत सिंह की आवाज़ में राख।

फिल्म गुड न्यूज से आपने सुना बी प्राक की आवाज में माना दिल गाने के बोल थे, और अब आप सुनिए शमशाद बेगम की आवाज में कभी यार कभी पार लगा तीरे नजर।

तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। आपने सुना मन्ना दे की आवाज़ में बेहतरीन गाना फिल्म सीमा से, और अब आप सुनिए आतिफ असलम की आवाज़ में। गाने के बोल है तेरा हुआ और फिल्म का नाम है लव यात्री।

हेलो, मैं हरी पिया हुई तेरी जीत रे। गीता दत्त की आवाज में आपने सुना ये बेहतरीन गाना फिल्म आर पार से। ये है प्रोग्राम गीतों के लहर रेडियो SBS के जरिए से। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है हम दिल दे चुके सनम फिल्म से। गाने के बोल है निमोड़ा निमोड़ा। कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में आप सुनिए ये बेहतरीन गाना।

सुनने वालों, रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। यहाँ से प्रोग्राम में मृत्यु समाचार, दुख की खबर आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। कोई चल दिया है अकेला, कोई रह गया है अकेला, ऐ दुनिया के मालिक तूने कौन सा खेल खेला। प्रोग्राम में मृत्यु समाचार सुनने के लिए ध्यान दीजिए अर्थात गौर फरमाइए। उत्रेख्ट आम्स्टरडामसे स्ट्रैटवेग नंबर 97 से लड़कन जेन, आशा, राजेश, सीता और समस्त लड़कन बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं। शुक्रवार 17 जुलाई, फ्राइडे 3 जुलाई, सुबह 9:00 स्मोरगंस 3:30, 86 साल, 86 साल की आयु में। 4 लड़कन जेन, आशा, राजेश और सीता के पिता, 12 लड़कन के आजा और नाना, 6 लड़कन के पर आजा और पर नाना। उत्रेख्ट आम्स्टरडामसे स्ट्रैटवेग 97 का रहने वाला सूरजू प्रसाद भगवान सिंह, जिन्हें लोग सूरज प्रसाद के नाम से पहचानते थे, इनकी मृत्यु हो गई है बोस एन डाउन में। अर्थी डोंदडाग 23 जुलाई, स्मेडक्स 2:15, क्रेमेटोरियम नोर्दरफेल्ड स्ट्रक्चरबान नंबर 1 नीवगेन शहर में दाह क्रिया की जाएगी। जिन लोग इस मृत्यु समाचार के बारे में कुछ और जानना चाहेंगे या समस्त दुखित परिवार को आप शोक सहानुभूति पेश करना चाहेंगे तो तार की नंबर आपको दिया जा रहा है 06-48-49-28-29. सुनने वालों से निवेदन और गुजारिश किया जा रहा है खबर को और जान पहचान वालों तक पहुंचा देने के लिए। रेडियो SBS इन तमाम दुखित परिवारों को इस दुख की दिनों में शोक सहानुभूति पेश कर रहे हैं और ऊपर वाला से यही प्रार्थना किया जा रहा है इन तमाम दुखित परिवारों को इस दुख की दिनों में पूरा पूरा शक्ति देने के लिए। रेडियो SBS आप लोगों के दुख में पूरा और पूरा शामिल है। इसी तरह से रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना प्रोग्राम में मृत्यु समाचार, दुख की खबर जो पेश की गई है।

दिल के रिश्ते तो किस्मत से बनते हैं, दिल के रिश्ते तो किस्मत से बनते हैं, वरना मुलाकात तो हजारों से होती है। राम राम, नमस्कार और सलाम वालेकुम सुनने वालों, आप सुन रहे रेडियो SBS और मैं हूं आपका सेविका नीता। छह बजकर 11 मिनट गुजर गए सुनने वालों, ये है स्टूडियो टाइट।

आवाज सुनने वाले, 6 बजे आपने सुना मृत्यु समाचार। आपसे निवेदन और गुजारिश है, ये जान पहचान तक पहुंचाने के लिए आपको रिएक्शन देना है या कोई गीत मांगना है तो आप जरूर तार कीजिए। तार का नंबर है 03226 6611।

आपको ले चलते हैं पहला नगमा की ओर। फिल्म का नाम है अर्पण और आपको सुनाएगी द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर और साथ दे रहा है सुरेश वाटकर।

फिल्म का नाम है अर्पण और आपको सुनाई द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर साथ दिया है सुरेश वाडकर और साथियों लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के म्यूजिक में आपने सुना

मौसम है मतवाला। रॉक एंड रोल क्वीन आशा भोसले और साथियों के वास में म्यूजिक सजाए इस फिल्म में राम लक्ष्मण। फिल्म का नाम है बेजुबा। फिल्म दीदार यार नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर सुनने वाला आप सुरे रेडियो एसबीआई।

को देखा तो समझ में आया। द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर के वास में फिल्म दीदारे यार। नासिया अहसन

एक सजाए सुनने वालों इलाया राजा प्रेम धवन का लिखल गीत आपने सुना और आपको सुनाई एस पे बल्ला सुब्रमण्यम और एस जानकी। फिल्म इंट का जवाब पत्थर किशोरदा के आवाज में आप सुनिए।

0: शंकर जय किशन के म्यूजिक पर
1: ये रिश्ता
0: आप सुन रहे हैं। फिल्म का नाम है ईंट का जवाब पत्थर। इस गीत के बाद सुनने वालों हम लेंगे एक ब्रेक, आप सुनिए एक ब्रेक और हम मिलेंगे ब्रेक के बाद।

0: हाँ सुनने वाला, तो आपने सुना एक कमर्शियल ब्रेक। आप सुन रहे हैं रेडियो SBS और मैं हूँ आपका सेविका नीता।
1: सीमा तुम्हें चोट तो नहीं लगी?
2: जॉनी, जॉनी तो वही खड्डा है ना जहाँ तुम मुझे छोड़कर चले गए थे।
1: हाँ।
2: अब तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे ना?
1: ए, उस वक्त तो कुछ और ही बात थी।
2: जॉनी,
1: अरे तुम्हारी पैर पर तो चोट लगी है। चलो नजदीक में एक चर्च है, मैं तुम्हें वहां तक उठा के ले चलता हूँ। चलो
2: उठा के।

लेजेंड्स किशोर दा द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर के वास में। फिल्म का नाम है जॉनी आई लव यू। राजेश रोशन ने म्यूजिक सजाया है इस गीत पर। फिल्म कर्ज। ''1980''.

तुझको पाने की जुस्तजू हो, शाम हो जाम हो, मन्ना डे के वास में द मैन विद द डायमंड वॉइस मोहम्मद रफी और साथियों। फिल्म का नाम है राजपूत।

मोहम्मद रफी और साथियों फिल्म के नाम है राजपूत। फिल्म सवाल सवाल से निकाला है और आपको सुना रहे किशोर दास।

खुशियां मना ले गुनगुना तू मुस्कुरा, हाथ लेके हाथ में तू साथी बन जा, दुनिया के गम को तू दिल से भुला, जिंदगी हसीन है तुम जा, खुशियां मना ले गुनगुना।

खयाम का म्यूजिक ने सुनने वाला खयाम ने म्यूजिक सजाया है और ये गीत लिखा गया है मजरू सुल्तानपुरी से, इसी फिल्म से निकाला है और आपको सुनाएगी रॉक एंड रोल क्वीन।

रॉक एंड रोल क्वीन आशा भोसले। टाइटल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी इज सवाल। श्रीमान श्रीमती किशोर दा द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर।

0: उस्ताद उस्ताद से।
1: कंग्रेचुलेशंस मिस ब्यूटी क्वीन।
2: सेम टू यू मिस्टर लकी प्रिंस।

अमित कुमार रॉक एंड रोल क्वीन आशा भोसले के आवाज में तुम सा नहीं। फिल्म का नाम है उस्ताद उस्ताद से। सुनो लो आज का वक्त है। इस गीत के बाद आप सुनेंगे एक कमर्शियल ब्रेक। ब्रेक के बाद हम फिर

नजर की बात है, किसी को क्या पता। नदीम खान की आवाज में आपने सुना, और एल्बम का बोल है तू स्पाइसी।

मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, उमर वागिद हुसैन के वास में। इस बार आप सुनिए ओम प्रकाश हीरा।

0: कितनी जवान है जिंदगी,
1: कितनी जवान है जिंदगी।
0: एल्बम अजीब दास्तां, और आपको सुनाएगी उमर वागिद हुसैन।

तुम्हें चाहता हूँ रब से ज्यादा। एल्बम अजीब दास्ता, उमर वागिद हुसैन के वास में।

ख्वाबों की दुनिया, सितारों की दुनिया, संजय और एल्बम अमोर, अमोर दिल के वादे में। उमर वागिद हुसैन, एल्बम का बोले 15 सुपर सोल्स फॉलीमा, फॉलीमा 5 से निकला है।

ब्यूटीफुल सॉन्ग उमर वागिन हुसैन के आवाज में 15 सुपर शोज वॉल्यूम 5। हाँ सुनोला, आखिरी गीत की तरफ हम बढ़ते हैं और आशा उम्मीद करती हूँ कि प्रोग्राम आपको जरूर पसंद आया होगा। उमर वागिद हुसैन की आवाज में आप सुन रहे हैं

कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। मेरा वजूद

आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, उनके लबों पे आज मेरा नाम आ गया।

0: क्या हुआ?
1: वो तो
0: क्यूट है ना?
1: अरे पहलवान है,
0: पर तुमसे प्यार करती है।
1: हो नहीं सकता।
0: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
1: हो नहीं सकता।
0: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
1: ये हो नहीं सकता।
2: होनी को तो कुछ भी हो सकता है मेरे श्याम।